0: कोई 16-17 साल की भर लड़की है कमाल की।
1: लोना बेहमिन यू हाय मिस्टर खान।
0: वेयर डू यू फ्रॉम?
1: आई फ्रॉम अ चाइनीज।
0: ये दिसा गया है, मेरा डी बेतु सा गया है मिस्टर।